0: नमस्कार आमै।
1: भलो भलो हुनुपर्ने, धेरै पछि के आइस त?
0: अब बालाई दमले लग्यो, माया गरेर ल्याकिरहनेले पनि छोडेर गई, दुःखमा थिए आमै।
1: ए आज के सुनाउँछस् त?
0: दुःख केही कथा सुनाउँछु।
1: लो सुना सुना।
0: ल

0: चिन्ता नगर है पुण्य, अर्को पाइहाल्छ नि। छोरा नि ठुलो भएछ, कतिमा पढ्छ?
1: अब गाइनेको छोरा हो, के पढ्नु आमै, सारङ्गी रेट छ। अब यति ठुलो आँगन छ आमैको, एउटा नाति भइदिए आइसन्छु।
0: त्यही त नि,
1: फेरि सानो मालिक मुगलन भावेलामा छोरो भयो भने त फसादै होला नि आमा।
0: ठट्टा गर्ने बानी नि यसको बाउकै जस्तो छ
1: हो है। हस् आमा, हस् लु है।

0: 113 सूचना अधिकारी 98 5 60 70 6 49 गुनासो सुन्ने अधिकारी 98 5 60 40 6 49 कार्यालय प्रमुख 98 5 60 30 6 49
1: आवेदन पेश गर्ने अन्तिम मिति 2083 साल असोज 26 गते।